गया पो भागा सहज सहज मलाया। काया सेज गुर शब्द सखाली ज्ञान तत् कर भोगो अणदन सुख माणी न तरलिया नानक दुरसन जोगो। सत संतोख कर भाओ कुड़म कुड़माइया बलराम जियो। संत जना कर मेल गुरबाणी गवाइया बलराम जियो। बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सुहाया। गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड परम गवाया। हम मैं पीर गई सुख पाया रोगत भय शरीरा। गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा। मन मुख बिछड़ी दूर महल न पाई बल गई बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ गई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे बिन सदगुर मग न पाया। उजड़ पंथ ब्रह्म गवारी खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभ दाता सदगुर पुरख मलाई। जन्म मरम जन्म के बिछड़े जन्म मिले नानक सहज सुमा सुपाई। आया लगन गणाई हृदय तन माहिया बलराम जियो। पंडित पा दे आन पति बह बचाइया बलराम जियो। पति बचाई मन बजी बधाई जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत्क दिवाई। वर पाया पुरखा गम गोचर साध नाव तन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले बिछड़ कदे ना जाई। सूही महला चौथा। हार पहलड़ी लाभ परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुरपुरा राधो सब कलिवख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ बडभागी मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया। हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो। निरपौ पै मन होए हो मैं मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया। हर वेखे राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सरब रहया पर पूरे। अंतर बाहर हर प्रवे कोमल हर जन मंगल गाई। जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाई। हार तीजड़ी लाभ मन चाऊ पया बैरागिया बलराम जियो। संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो। निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी। संत जना वड पागी पाया हर कथिया कथ कहानी। हिरदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो। जन नानक बोले तीजी लाभ है हर उपजै मन बैराग जियो। हार चौथड़ी लाभ मन सहज पया हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिलया सुभाई हर मन तानू मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया आनंदन हर लिव लाई। मन चंदिया फल पाया स्वामी हर नाम बजी बधाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम बिगासी। जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अवनासी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला चौथा कर दूजा। गुरमुख हर गुण गाई हृदय रसन रसाई हार रसन रसाई मेरे प्रभ भाई मिलया सह सुभाई। अनदिन भोग भोगे सुख से सो बै शब्द रह लिवलाई। वड्डे भाग गुर पूरा पाई है अनदिन नाम त्याई। सहजे सहज मिलया जग जीवन नानक सुन समाई। संगत संत मिलाए हार हम हार सार निर्मल नाई। निर्मल जल नाई मैल गवाई भई पवित शरीरा। दुरमत मैल पगई ब्रह्म भागा हो मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर हुआ वासा। हार मंगल रस रसन रसाई नानक नाम प्रगासा अंतर रतन बिचारी। गुरमुख नाम प्यारे हार नाम प्यारे शब्द निस्तारे। अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कट जानन कर मंदर सुहाया। तन मन अर्प श्रृंगार बनाए हार प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कहे सोई पर की जय नानक अंक समाया। हार प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहन आया। व्याहन आया गुरमुख हर पाया सातन कंत प्यारी। संत जना मिल मंगल गाई हर जियो आप सवारी। सौर नार गण गंधर्व मिलाए अपूर्व जंज बनाई। नानक प्रभ पाया मैं साचा ना कदै मरै न जाई। राग सुही शांत महला चौथा कार दी जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀਐ ਘਰ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਥਾਈ ਅਹਿਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਰਾਹੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਅਣਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਪੂਜਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਪਛਾਣੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੁਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੁਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਪਾਈਐ ਸਹਿ ਸਮਾਈਐ ਜਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵਾਂ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਈ ਨਾਨਕ ਸੁਪ੍ਰਭ ਸਭ ਦੇ ਜਾਪੈ ਅਹਨਸ ਰਾਮ ਧਿਆਏ ਇਹ ਜਾਗੋ ਦੁੱਤਰ ਮਨਮੁਖ ਪਾਰ ਨ ਪਾਈ ਰਾਮ ਅੰਤਰੇ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਚਤੁਰਾਈ ਰਾਮ ਅੰਤਰ ਚਤੁਰਾਈ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਮ ਮਾਗ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਕੋ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਪੁੱਤ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਆਗੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਈ ਹਉ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕਿਨ ਬਿਧ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਚਲੋ ਜੀਵ ਤਿਆਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ ਜੀਵ ਤਿਆ ਮਰੀਆ ਪਉ ਜਲ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਮਤ ਪਰਗਾਸ ਭਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ

सजतियां मोह माया वे सब काल खाए इन मनमुख मूड सजुतियां जन नानक गुरमुख उभरे गुर शब्दी होम छुटियां वस आने होवे जन इस मन कौ मन बासी ज्यों निरप नित भौंदियां दुख रहण वे बिहानियां नित आसास करेंदियां गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौंदियां जन नानक प्रभ दी मती छड़ आसा नित सुख सौंदियां सात अन्यासा चित करी राम राजिया हर प्रभ सिजड़ी आई मेरा ठाकुर अगमन दयाल है राम राजिया कर कृपा लो मलाई मेरा मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया हर शरदा सेज बछाई जन नानक हर प्रभ भाणिया राम राजिया मिलिया सह सुपाई एक तसेज हार प्रभु राम राजिया गुर दसी हार मेले मैं मन तानु प्रेम बैराग है राम राजिया गुर मेले कृपा करे हौ गुर बिटो कोल घुमाया राम राजिया जियो सतगुर आग दे गुर तुठा जियो राम राजिया जन नानक हर मेले राग सूही संत महला पंजवां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन बावरे तू काय देख भुलाना सुन बावरे नेह कूड़ा लायो कुसंभ रंगाना कूड़ी देख भुलो अड लह ना मुलो गोविंद नाम मजीठा थीवै लाला अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोह मगन थी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन शरण कृपा निध राख लाज भगताना सुन बावरी सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरी जू आया तिस जाना ने चल हब वैसी गुण सुन परदेसी संत जा संग मिल रही है हार पाई है भागी सुन बैरागी चरण प्रभु कह रही है यही मन दी जय संक न की जय गुरमुख ताज बहुमान नानक दीन भगत।

बावरी हब वैसी गर्भ गमानो निचल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए जासा जीवत मरिया पौ जल तरिया जे थीवे कर्म लिख आसा गुर से बीजै मृत पीजै जिस लावे सह दयानो नानक शरण पया हर द्वारे हों बल बल सद कुरबानो सुन बावरी मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरी थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाईऐ थियो निमाणा सतकुरबाणा सगला आप मिटाईऐ ओह तन भाग सुधा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाईऐ नानक दीन शरण सुख सागरु राख लाज अपनाया हम तिस पै आप विच आया नानक दीन शरण सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कार तिस कै बलराम जियो बाबल मेरा बड़ समर्था करण कारण प्रभहारा जिस तिमृत दुख कोई ना लागै पौजल पार उतारा आजुगाद भगतन का राखा उसत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा हारे आपे लय मिलाए क्यों बिछोड़ा थी वही बलराम जियो जिसनो तेरी टेक सो सदा सद जी वही बलराम जियो तेरी टेक तो रहते पाई सचे सृजन हारा जिस ते खाली कोई नाही क्या हे प्रभु नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुर पूरा नानक सद बलहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाऊ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आई गय कंठ लाई मिले अंतर जामिया सत संतोख वजह वाजी अनहदा चुनकारी सुन वे भय बनासी सगल नानक प्रभ पुरख करण हारी उपजया तत् ज्ञान सौरे पीयै एक हार बलराम जियो ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना साकै पैन कार बलराम जियो बिसम पेखै बिसम सुनिए बिस्माद नदरी आया जल थल महियल पूर पूरन स्वामी कट कट रहया सुमाया जिस दे उपजा तिस माहे समाया कीमत कहण न जाई ते जिस दे जिसके चलत न जाही लखणे नानक जिस ते सहम बट आई जिस दे उपजा तिस माहे समाया कीमत कहण न जाई जिस दे जिसके चलत न जाही लखणे नानक तिसें ते आई राग सूही संत महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावण लागे हर रंग अण दिन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे परम पागे काज सगल सवारिया श्रवण सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप बड़ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी जी ओ पिंड प्रभ आ गए अनहद शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाई हर हर दुख नासे रहस उपजय मन करनाम तंत मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख बना हुए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया तारू सदा हर गुण गावा गुरमिल सागर तरिया हर चरण जपत नरिया हर चरण ते आई सब फल पाए मिटे आवन जाना भाई भगत सुभाई हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख पार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पातत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ ते आया सगल इच्छा पुनिया हौ ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी विछुनिया मन शांत आई बजी बदाई मन हो कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा पाज जगदीसरै राग सूही संत महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही कण चेरी राम तू सागरो रतनागरो हो सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू बड़ दाना कर मेरा मत साई कृपा कीजै सामत दीजै आठ पैर तुद त्याई गर्भ

ज्ञान सदगुरु सदपुरखा बिनो करुण गुरपास हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मोकौ राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जन केवड़ पाग वडेरे जन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सहै मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गूजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवै उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मै जन तो पाई ता का रिज का गय कर तरया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काही मन पौ करया उडे उड़िया वैसे कोसा तिस पाछ बजरे सरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन महे सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न पारा वरिया राग आस्ता महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन।

सब सह का जन होई। आस्था महला चौथा। तू कर दस जार मैं डसाई, जो तुम पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हम पाई राव। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहे तन ना मरतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, बजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना ही सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को बल मोबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै कट कट के बट बट की जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सिरच सब तारै आप अपनी भू

आकाश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बारनत पैन पैन तो है तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज असे तिज केने, पुत पुज खान बहोर रच दीने। कहूं भूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो।

दौषयते उठवत पाता सकलमलेश करो रण खाता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दोष्ट दुगत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी जो कल को एक बार ध्याए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं।

आई सवैया। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत

0: उच्च रहे।
1: सौंदे वाह वाह उच्च रहे, सौंदे वाह वाह उच्च रहे।
0: उठ दे भी वाह करें, उठ दे भी वाह करें,
1: उठ दे भी वाह करें, उठ दे भी वाह करें।
0: जिन्हां नूं तू बख्शिश कर देना, जिन्हां नूं इह सोझी समझ आ जांदी है, बस फिर उते हर गुण सद ही आख वखाण। हर वेले वो थकते ही नहीं, वो अकते ही नहीं, उन्होंने तो ऐसी अवस्था बन जाती है। गुरु नानक पातशाह जी ने लिखा सिद्ध गोष्ठ में, जब सिद्धा ने पूछा महाराज तुसी कैसे मनुख बनाने चाहते हो, कहते मैं एहोजे मनुख बनाने चाहना गुरमुख साचे का पहो पावे, गुरमुख साचे का पहो पावे,
1: गुरमुख साचे का पहो पावे, गुरमुख साचे का पहो पावे,
0: गुरमुख बाणी अखड़ घड़ावे, गुरमुख

0: सच्चा आप सच्चा दरबार, सच्चा आप सच्चा दरबार।
1: असि कई बारी आप ही मियां मिठू बन जाते, मैं हूं कीता जी, मैं हूं कीता, नहीं नहीं। पातशाह कहते ने तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए। नानक गया जापे जाए, उथे जाया पता लगना है। इसलिए गुरुदेव ने सानू समझा दिता कि वाहिगुरु साडे वास कुछ नहीं, तू आपे करता, तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर देखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख। गुरु के उपदेश राही जिहड़े गुरबाणी नूं सुन के पढ़ते विचारते मनते ने, उन्हां नूं इह गल प्रगट हो जाती, समझ आ जाती।

0: करने वाले हो,
1: तुम हो पूरी चतुर्दश कंता,
0: तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। चतुर्दश, चतुर मैंने चार, दस मैंने दस से चार जमा कर दे, चौदह। इस सारे संसार की वंड चौदह पुरियां विच की थी। कंता का मतलब है खसम मालक। तुम हो पूरी चतुर्दश कंता, तुसी चौदह पुरियां दे खसम मालक हो।
1: काल पाए ब्रह्मा बप धरा,
0: काल पाए काल दे अधीन ब्रह्मा बप धरा। बप मैंने शरीर, ब्रह्मा का शरीर भी काल के अधीन है।
1: काल पाए शिवजू अवतरा,
0: काल के अधीन ही शिवजी पर प्रकट होया है।
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा,
0: जितने देवी देवते ने सब काल के अधीन ने। रोज तुसी पढ़ दे रहन न पावे सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया। बादशाह शाह व्यापारी मरना सब ने मरना, ये सब काल के अधीन हैं।
1: सकल काल का किया तमाशा,
0: सारी खेड़ काल के अधीन है।
1: जवन काल जोगी शिव कियो,
0: जवन काल जिस समय तुसी योगी शिव, योगी का मतलब जुड़िया होया शिव बनाया सी।
1: वेद राज ब्रह्मा जो थियो,
0: वेद राज का मतलब वेदा नू लिखण वाले ब्रह्मा जी नू तुसी थियो, मन होया बनया बनाया।
1: जवन काल सब लोक सवारा,
0: जिस समय तुसी ये सारे लोग सारी दुनिया नू सवारिया बनाया।
1: नमस्कार है ताहे हमारा,
0: उस अकाल पुरख नू मेरी नमस्कार है।
1: जवन काल सब जगत बनायो,
0: जिस परमात्मा ने काल के अधीन सारे जगत नू बनाया है।
1: देव दैत जच्छन उपजायो,
0: हाँ ये दैत का अर्थ गड़बड़ होता, दैत देव दैत देवते ते राक्षस जच्छन उन्हां दे अगों जिहड़े अहंकार कह लो कोई रागी कहिंदा, जिहड़े देवतियां दे अगे कीर्तन कहते देव दैत जच्छन उपजायो।
1: आद अंत एक अवतारा,
0: आद ददे नू सहरी है मुड विच ते अंत अखीर, इको परमात्मा ही है। रोज तुसी पढ़ दे आद पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर। आद अंत एक अवतार, जिहड़ा आद विच भी सी मध विच भी ते अंत विच भी एक परमात्मा है।
1: सोई गुरु समझियो हमारा,
0: समझियो नहीं समझियो, समझना करो वही साडा गुरु है। लोग कहते जी फलाने का गुरु कौन सी, बड़ा जोर लगा होया कोई आंदा गुरु नानक साहब का फलाना गुरु सी, तो जब उन्होंने फैसला करता साडा गुरु ते ककाल गुरु। आद अंत कह अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। फिर ये उत्ते हूं कोई दलील देन की कोई लोड़ है।
1: नमस्कार किस ही को हमारी,
0: बस उसे नू मेरी नमस्कार है।
1: सकल प्रजा जिन आप सवारी,
0: जिसने सारी सृष्टि आप बनाई सवारी है।
1: शिवकन को शिव गुण सुख दियो,
0: हाँ कुछ संप्रदावा एदा पाठ शब गुण कर दिया। मैं पूछा उन्होंने मेरा मतलब नहीं दसता। शिवकन जेड़ा है सेवक तो शिवकन बहुवचन प्लूरल, जेड़े उस परमात्मा दे सेवक सिमरन कर देन उन्होंने फिर शिव गुण दैवी गुण दें। शिवकन को शिव गुण सुखती, उन्होंने फिर दैवी गुण देना, उन्हें निम्रता उन्हें मिठास उन्हें सारे दैवी गुण आ जाते हैं।
1: शत्रुन को फल मोह वध कियो,
0: शत्रुन का मतलब जिहड़े उन्हों का बुरा चाहण वाले उन्हों धक्का करन वाले उन्होंने पल मोह अख फरकन के समय वध कर।
1: घट घट के अंतर की जानत,
0: तुसी हर एक दे अंदर दी जानने वाले हो।
1: भले बुरे की पीर पछाणत,
0: चंगे ते माड़िया दी पीर नूं तुसी पछाणदे हो, तुहाडे तो कोई लुकी छिपी।
1: चीटी ते कुंचर अस्थूला,
0: चीटी कहंदे ने कीड़ी नूं, कुंचर कहंदे हाथी। उहदी रचना में सब तो छोटी कीड़ी है ते सब तो वड्डा हाथी है। चीटी ते कुंजर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर, सारे उत्ते वाहगुरु जी कृपा दृष्टि। कीड़ी की खुराक किन्नी है, ਹਾਥੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।
1: ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ,
0: ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ,
0: ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
1: ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ,
0: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ।
1: ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੇ ਜਾਣੈ,
0: ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ। ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਾਇਦਾ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਿਲਮਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਿਮਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ।
2: ਕੇਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
5: Guru Gobind Singh Ji.

मालवे की धरती लंघ के सिंघा ने माझे की धरती विच पैर रखे हरी के पत्तन तो दरिया पार किते श्री तरन तारण साहब पवित्र सरोवर विच सिंघा ने इनान किते इत्थे खालसे की गिनती 5000 की है। सिंघा ने कपड़े उत्ते हथ छिड़के गुट्टा ने उत्ते गाने बने लारी मौत बिओ लई खालसे सारे इओ आ गई।

है ना खेलू अब लोगे तेरे हाथू तेरे ना खोकला बड़ा हाथ जारे कन्ने खाल तेरू लोटना बड़ा हाथ जारे

चार संगत जितने भी आप माई भाई गुरु महाराज की पवित्र हजूरी विच पहुंचे हो, सारे अपनी रचना पवित्र करने वास्ते गुरबाणी की धारना विच किन्ना हिस्सा च बोलन की खेचल करो। हर रोज की तरह पहले हिस्से च दास बोलेगा, दूसरे हिस्से च सब भाई और तीसरे हिस्से विच सब बीबियां भी गुरबाणी की धारना पढ़ के अपनी रचना पवित्र बना लो। कोई नाम

अपने नगर च धर्मशाला बनाओ ते सवेर शाम गुरबाणी का कथा कीर्तन परमार्थ वाले पास दिया विचार हो और तुसी उस धर्मशाला में एकत्र होके गुरु के निमित्त लंगर भी चलाओ आ गया अभियाग के खेती की सेवा हो ठगा ने फिर गुरु बाबा जी के वचना पर पहरा दिता साहब गुरु नानक देव जी महाराज की बख्शिश हुई वह ठगा तो देवते हो लंगड़े हुए तो ताते गुरु बाबे के उपदेश के बरकत है सतगुरु वचन तुम्हारे निर्गुण ने सारे महा दिखा दी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे।

या उठ उठ देख बपड़े कितने गह किस नाही जिन ए मेघ बठाया तिस राखो मन माही। जिस अकाल पुरख वाहगुरु ने सिंडर नूं प्रेर के भेजा है उस अकाल पुरख वाहगुरु की याद हिरदे च दसनी चाहिए है। तो भाई जी ना प्रेम है प्यार है सार संगत दे नाल तो कई तो चार छिटा दे के घबरा जाते ने बदले चढ़ के आ जाए फिर ही सोच लग जाने भी जाइए गुरु दरबार नूं जाना। फरीदा गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला ता भिजा कंबली रहा ता टुटा नहीं हो। उन्होंने मन च कशम काशी हुंदी रहिंदी है

दुबदा मनमुख रोग व्याप्ति तृष्णा जलह अधकाई मर मर जम्मह ठौर ना पावह बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई हौ मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग न जाई रहा सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते बिन शब्द सुरत ना पाई।

हर का नाम निदानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज कर वासा पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरो महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझे है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनों दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाव ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर धारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरो महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्ता माही समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाऊ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरो महला तीजा। शब्द बीचारे सो जन साचा जिनकै हिरदय साचा सोई। साची भगत करह दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवावे है लाभ मांग है लाहा लाभ किदू होई। जम काल सदा है सिरी ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवे दिन राती हम रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजे है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरो महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाई खुआई। उदर नै सान ना भरिए कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाऊ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी।

ज्ञान तत बिचारा ज्योति ज्योत मलाई सो प्रभ साचा सद ही साचा साचा सब आकारा नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा भैरव महला तीजा कल मैं प्रेत जिन्नी राम ना पछाता सतयुग परमहंस बिचारी द्वापर त्रेत मानस वरत है बिरल होमै मारी कल मह राम नाम वड्याई जुग जुग गुरमुख एक

सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम निवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई। जिन मन वसिया ते जन सोहे हिरदय नाम वसाई। घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया मान। जो किच कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण। भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए ले गुर शब्दी विचार। गुर पूरे ते सोजी पवे फिर मरे ना वारू वार। मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया। सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह को रव रहिया। गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ। अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए। सतगुरु जिनी ना सेविया दाता से अंत गए पछताए। सतगुरु सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए। नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाए। भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना। भूला चोटा खाई मर मर जम्मै सदा दुख पाई। दर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना। हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ। पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती भौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया उरतार। ज्यों तिस भावे त्यों चलावे करना किछु ना जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई। भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया। दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी। बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार। रहाउ पचुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमावे कूड़ो होए। सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोई। हर हर नाम हृदय सद वसिया पाया गुणी निदान। गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराई आपे मार्ग पाई। आपे गुरमुख दे वडियाई नानक नाम समाई। भैरों महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला। दूजे भाए फाते जम जाला सतगुर करे मेरी प्रतपाला। हर सुख दाता मेरे नाला गुर उपदेश प्रहलाद हर उच्चरे। सासना ते बालक गम ना करे रहाऊ। माता उपदेश प्रहलाद प्यारी पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले हो उबारी। प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुर दिया बजाई। संदा मर का सब जाए पुकारी प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकड़ी बगाड़ी। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार हर तेरा कहा तुझ लए उबार। इन मह पयान रूप निकसिया थम उपाड़ हरनाकिस नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कारज सुवारे प्रहलाद जन के इक्की ही कुल उधारे। गुर कै शब्द हम मैं बिख मारी
नानक राम नाम संत निसतारी। भैरव महला तीजा, आपे दैत लाई दिते संत जना को, आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने। शब्दे मेल मलाया रहाओ, हन दिन भगत करह दिन राती। दुबदा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते। सच वस्या मन सोई, मूर्ख दुबदा पढ़ है मूल ना पछाण है। बिरथा जन्म गवाया, संत जना की निंदा करह। दुष्ट दैत चढ़ाया, प्रहलाद दुबदा ना पढ़े। हर नाम ना छोड़े, डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो राखा, दैंत काल नेड़ा आया। अपनी पैज आपे रखे, भगतां दे वडियाई। नानक हर नाक्ष नखी बदारिया, अंधे दर की खबर ना पाई। राग भैरव महला चौथा, चौपदी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जन संत कर कृपा पग लाइन। गुर शब्दी हर भज सुरत समायन, मेरे मन हर भज नाम नारायण। हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख भवजल हर नाम तरायन। रहाउ संगत साध मेल हर गायन, गुरमति ले राम रसायन। गुर साधु अमृत ज्ञान सरनायन, सब किलविख पाप गए गवायन। तू आपे करता सृष्ट तरायन, जन नानक मेल तेरा दास दसायन। भैरव महला चौथा, बोल हर नाम सफल सा करी। गुरु उपदेश सब दुख पर हरी, मेरे मन हर पज नाम नरहरी। कर कृपा मेलो गुरपूरा, सत संगत संग सिंध भौ तरी। रहाउ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी, कोट कटंतर तेरे पाप पर हरी। सत संगत साध धूर मुख परी, इस नानकियो अठ सठ सुरसरी। हम मूर्ख को हर कृपा करी, जन नानक तारे हो तारन हरी। भैरव महला चौथा, सो कृत करनी सार जप माली। हिरदय फेर चले तुद नाली, हर हर नाम जपो बनवाली। कर कृपा मेलो सत संगत, टूट गई माया जम जाली। रहाउ गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़िए शब्द सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारो नगर निहाली। भैरव महला चौथा, सब घट तेरे तू सबना माही। तुझते बाहर कोई नाही, हर सुख दाता मेरे मन जाप। हौ तुद सलाही, तू मेरा हर प्रभ बाप। रहाउ जह जह देखा तह हर प्रभ सोई। सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई। जिसको तुम हर राखिया पावे, तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल तल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर। भैरव महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार। मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार। मद सूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु। गुर शब्दी हर काढ़े मार। रहाउ जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सो।

नानक दास एहो किया बीचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। भैरों महला पंजवां, लेप न लागो तिनका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्मे।

पापी ओ आप पचाया। रब मात पिता अपने दास का रखवाला, निंदक का माथा इहां उहां काला। जन नानक की परमेश्वर सुनी अरदास, मलेश पापी पतिया पया निराश। पैरो महला पंजवा, खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाम। झूठ झूठ झूठ।

गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह ने तरिया तर पनाह खुदाई गरीब नवाज दिन रहन त्याय नानक को खुद खसम मेहरवान अल्लाह ना विसरे दिल जी प्राण पैरों महला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर रसना कहो रहाओ कल युग मह एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए पतत पावन प्रभ तेरो नाओ पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ रहाओ साधु संग होवे उधार शोभा पावे प्रभ कै द्वार सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा टूर बांछ सब सुर नर देवा नानक पाया नाम निदान हर जप जप उदरिया सगल जहान भैरों महला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अगन मह पावे पापी ते राखे नारायण पापी की गत कत हूं नाही पापी पतिया आप कमाएं रहाऊ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहया समाई नानक दास हर की सरनाई राग भैरो महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा कमन बिख्या रस माता रे मन मेरे तू गोविंद भाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित दी है चित बिगरस काज रहाउ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह मन मुख अंध अज्ञान हर की भगत करह तिन निंदह नगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पैरों महला पंजवा बन मह पेख्यो तृण मह पेख्यो ग्रह पेख्यो उदासाई दंड धार जट धारै पेख्यो वर्त नेम तीर्थाई संत संग पेख्यो मन माए ऊब पयाल सर्ब मह पूरन रस मंगल गुण गाय रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो जत जंगम का पड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेख्यो नट नाटक निरताई चहो मह पेख्यो खत मह पेख्यो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तो किससे कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिनकै बल बल जाई है जेह घट प्रगति आई भैरों महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़ै नेड़ै सब को कह गुरमुख भेद बिरला को लह रहाओ निकट न देखै पर ग्रह जाई दर्ब हिरै मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम भुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोह मूठा है मूड़ अंतर वस्तु संतर जाए बाज गुरु है परम भुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया।

पंजवा दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पैर आरा दिया पूरन सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसे पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवे, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत न जानिया ना जाते आरा, ओ तेरी जग जीवना निर ठाकुर।

अमृत दृष्ट संत जीवाय, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुर गुणतासा, दुख नाथे सुख आए समाए, तील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक ते जन

कीनी प्रभ दात, प्रभ कृपा ते भय सोहेले, जन्म जन्म के बिछड़े मेले रहाओ। सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का दिन से अथाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आठ पैर प्रभ सिमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेल ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। दुख दर्द जम नेल ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की वाणी। साधु जन राम रतन बखानी, रहाओ एक बिन ना ही दूजा कोय। जा की दुष्ट सदा सुख होए, साजन नीत सखा कर एक। हर हर अखर मन में ले, राव रया सर्वत्र स्वामी। गुण गावे नानक अंतर जामी, राव रया

हर हर कथा साध संग सुनाए, पीवत राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण मिटी खुद पास रहा, सर्व कल्याण सुख सहज निदान, जाते हृदय वसे भगवान, औखद मंत्र तंत सब छार, करने हार हृदय में तार, तज सब परम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल इहु धर्म, तज सब परम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल इहु धर्म। गौड़ी महला पंजवां, सांत पई गुरु गोबिंद पाई, ताप पाप बिनसे मेरे भाई,

पुनित मीत गई ब्याद उभरे जन मीत मन बच करम प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई मन बच करम प्रभ

साध संग हर अमृत पीवै, नानक नाम जपे सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, सिर कर बैसो।

बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भय होए पजो भगवान साध संगत

तेरे मुल निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ। पंत बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे, खेद करें और बहुत सुनतावे आयो शरण तुहारे। कर कर हारे ओ अनक बहु पांति छोड़े कत हो नाई, एक बात सुनता कियो साध संग मिट जाय। कर कृपा संत मिले मोए चिंते तीर्ज पाया, संति मंत दियो मोए निर्भो गुर का शब्द कुमाया। जीत ले

गुर प्रसाद न होए संताप, गुर के चरण लगे मन मिथे, निर्विघ्न होए सब थाई उठे, सब सुख पाए सतगुर तुठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे तिथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रत पाले, जिथे तिथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रत पाले। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हृदय त्याहे, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनों दान, सफल जन

परमेश्वर अपना बिरद सुमारिया, साध जना हुई कृपाला, बिकसे सब परवारिया, कार्य सतगुर आप सुवारिया, वडी अर्जन हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया, रहाओ वन त्रिन तेर भवन हरिया होए, सगले जी सधारिया, मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन

प्रभु आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया, रहाओ रज रज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम हृदय माए त्याई, नानक गुर पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई, नानक गुर पूरे सरनाई जिन

लोग गुण गावो नित राम के, ए औखद जोग आए बसो कर देश में ए पले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न पए ले गए बयोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न पए ले गए बयोग। बिलावल महला पंजवा, बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल, गुरपुरे कृपा करी काट्या दुख रोग मन तन सी।

साध संग मन तन हितै, फिर दुख न जापै। हर हर हर हर जापिय अंतर लिवलाय, किल विख उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई। सुनत जपत हर

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसे बेयोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण जोग नानक प्रभ।

ताया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पाया गुरपुराया रदया सगला दुख गया राखण हारे राखिया अपनी करमया रहाओ बहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपने या सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया सिमर सिमर मन तन सुखी

आप प्रभ उपजा सुख शांत वर प्रताप अचरज रूप हर कीने दात गुर गोविंद कृपा करी गुर गोविंद कृपा करी।

पूरा पेटिया जिन बंस बनाए राम नाम औख दिया एक लाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार।

अपने बालक आप रखे पार ब्रह्म गुरदेव, सुख शांत सहज आनंद पय पूरन पय सेव, रहाओ भगत जना की।

में जगत उधार नवखन प्रताप, दुख बिन से सुख अनंत परवेशा, कृष्ण बुद्धि मन तन सच ताप, अनाथ को नाथ सदन समरथा सगल

नाम सिमर प्रभे अपना मन तन पय अरोगा कोट विघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पय अरोगा कोट विघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपाखे।

भक्त बछल दियाला संतों की पैर रखदा आया आज बिरत ब्रत पाला हर अमृत नाम पूजन नित पुंचो

मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया। सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया। राखण हारे राख्यो बारक सतगुरु ताप उतारिया। राखण हारे राख्यो बारक

रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा तारी। गए कलेश रोग सब नासे, प्रभ अपने कृपा तारी। आठ पैर अराधो स्वामी, पूरन काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास, हर जियो तू सुख संपत।

पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे

कर्ण कारण समर्थ स्वामी पूरन पुरख विदाता रहाओ। आनंद बनोद मंगल गुण गाओ, आनंद बनोद मंगल गुण गाओ,

सुख सहज आनंद गुण गाओ, मन तन दे सुखाली रहाओ। पत दी उदाहरण सतगुरु मेरा, मोहे तिसका परवासा। पत दी उदाहरण सतगुरु मेरा,

लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाए, फलो समूरत पूरा, फलो समूरत पूरा, शांत सहज आनंद नाम जप, वाजे अनहद पूरा रहाओ। मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई,

पाई सुख सागर प्रभ विसरो नाई मन चिंदड़ा हल पाई संतो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभ विसरो नाई मन चिंदड़ा फल पाई रहाओ

दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निदान मंगल रस रूपा सर्व निदान मंगल रस रूपा हर का नाम हदारो नानक पत राखी

मेरा सतगुर रखवाला हुआ, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोबिंद नवा नरोआ रहाओ। ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज दुखाई। ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई। साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाई। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया। अटल बचन नानक गुर तेरा, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक तारिया। सूरत महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाय। अपने सेवक की आपे राखे, पूर्ण पई बड़ाई। जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई। अपने सेवक की आपे राखे, पूर्ण पई बड़ाई। पार

हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए, औगन सब मेटे दयाल पुरख बकसंद। रहाओ जो मांगे ठाकुर अपने ते,

दे, नाम से आयन सुख फल पायन, आठ पैर आरा दे, तेरी शरण तेरा परवास, पंच दुष्ट लै सादे, ज्ञान ध्यान किस कर्म न

सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रखमन माई, ताकि शरण प्रयो नानक दास, जाते ऊपर को नाई। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माई, ताकि शरण

भी दुख दर्द प्रमता का भागी रहा। जहाँ को रस हर रस है आयो, तो अनरस ना ही लपटायो। जहाँ का कहा दर्द चले, जहाँ का कहा दर्द चले, सो किसको नजर ले आवे तले। जहाँ का सब किस

की। परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांप सैद सुख खिन में उपजे, सांप सैद सुख खिन में उपजे, मन होवा सदा सुखाला रहा, हर हर नाम दियो दारू, तिन सगला रोग

छोटा होकर बस भी खर्च कर लगता है। बंदी बिल्कुल दिखते किसी जा सकती है, किसी भगवान बिल्कुल दिखती हुआ जा सकती राजे का पुत्र और महान एक कर्म खुद ले जा रहे राजे की गाइना की खाती कर रहे युवक देखता भी बहुत खेड़दार खेड़दार में जो देखता तो दूसरी गाड़ी को देखी थी उन्हें पक्के पाँव उठा दिया। मैंने बड़ी चोट लगी कि बाप मेरा हो कि मैनू ही पक्के उठा दिया लड्डो लिखता बाप रोड़ आता है जो बच्चा रोंदा है जो नहीं रोंदा तो हंसता भी है रोंदा भी खून गड्डो लिखा पे रोण आका लिया होके तो अपनी मां के कोल जाके पुछता है दुनिया माए तू इस गल से बात अज मैंने छोटी मां ने पिता की गोद से फर के उठा दिता क्योंकि बच्चा है तेरी थां नहीं जिसे मेरा पुत्र थान है इन बस तू तो पुरानी है कि मेरे पिता की बात पुरानी है।

जाती है विधान कर विधान करती क्यों है। गुरबानी कीर्तन गायन करते हैं ज्ञान ज्ञान लक्ष्मण सभा के चित्र जहन ज्ञान भक्ति दान नाम दान कर विकला सजाने पर पूर्ण गुरु चरण की बना ले आओ मन कर।

नमो कलयकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंब भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशयाश्रे नमो भांग भंके अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामेन्द्र भंगी दृगाले अनंगीय कामे एक अक्षरी शांत अजय अलय अभय अभय पूजु अनाश अकाश अगांज पांज लख पख अकाल दयाल अलेख पेख नाम काम घाट अनाथे परमाथे अजो नियमो नि नराग्य नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंज लेखे भुजंग प्रयात छंद नमासल प्रणामे समासल प्रणाशे अगंजल नामे समासल निवासे नरकामंग बभूते समासल स्वरूपे गो कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल परिंदा समाल तुल निवासी अजैब विभूते गजैब गनी मैं हरियंग करियंग करीमल रही मैं चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग बपुते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं एको ओंकार सतगुर प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख प्रयोग कर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा देकर संत समूह नेक मति गए सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखित प्राण बदि गए श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति गए माते मदंग जर अर संग अनूप दंग सुरंग सुवारी कोट दुरंग गुरंग से गुद तय पौन के गौन को जात निवारी पारी बजान के भू पली विद न्यावत शीस न जात विचारे एते पाए तो काम पय भूपत अंत को नंग पाए पदारी जीत फिर सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारी भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे सरी पद सरी भगवान भजे बैनु अंत गवंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दयादम दान सुसंजम नेमा नेकब सेखाय वेद पुराण देव पुराण जमीन जवान सुबान के बेखाय बौण हार जति अदार सब सुब चार हजार के देखाय सरी भगवान भजवन भूपत एक रति बन एक न लेखाय शुद्ध सुभा दुरंत दबा सुसास नादुर जान दलेंगे भारी गुमान परि मन मैं करू पर्वत पंखल नहा लेंगे तोर रीन मरोर मवासन माध्यम दंगन मान मलेंगे सरी पात सरी भगवान भजे मैन अंत सरी पात सरी भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार बचारे सर की तार बछैया तोर तदे समलंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गुड़ान को तोड़ना हार सो बात नहीं जग चार लवैया साहिब श्री सब को सरनाय को जाच का नेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साचर भूत भवैख भगवान जपेंगे जीव जते जल में थल में पल ही पल में सब थाप दपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात अब जो अंतर लोक राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक स्वयंबर साज भरायेंगे ब्रह्म महेश्वर विशंसरी पाद अंत फते जम्बाद भरायेंगे जे नर सरी पद के बरसें पाग दे नर फेर न दे तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे भगत ध्यान लगायो नहात फिर लिये सात समुन्द्र न लोग गए पर लोग गवायो बास की ओख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबतायो साच कहूं सुन ले सब जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभु पायो काहू लह पाहन बोई दरियो सर काहू लह लिंग करे लटकायो काहू लख हर वाची दिशा में काहू बछा को शीस नवायो।

करो प्रतिपार। हमरे दोष्ट सब तुम का बहु आप हाथ मोह बचा बहु सुखी वसै मोरू परिवार सेवक सेख सब करतार।

काल का किया तमाशा, जवन काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब की ओ वेद राज ब्रह्मा जूते ओ, जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहीं हमारा, जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो, आदि अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझे हमारा, नमस्कार दस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सदरन को बल मोह बद कियो, गड़ गड़ की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर बजानत, चीटी ते गुंजर अस धूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाई ते दुखी, सुख पाई साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, गट गट गे बट बट की जाने, जा बोध करख करा कर तारा, प्रजा तरत दब दे अपार, जब या करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब थारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद हरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील नाद असंभ, दा कामूड जारत बेदा, जा को बेब न पावत बेदा, तां को कार बाहन अनुमानत।

बहोर रज धीनी। कहूं फूल राजा हवा बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाई जम्पव, आज जुगा स्वरूप सुजम्पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संग्रो। दोष जेते अठवत।

जग मैं आए कहे क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया दुद श्री राजा तू जग मैं आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कहे नानक शरीर प्रवान होआ जिन सतगुर से उच तलाया हे नेत्रो मेरे हो और तुम मैं जो उतरी हर बिन वरना देखो कोई हर बिन वरना देखो कोई नदरी हर निहालिया ही बेस संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझा जा वेखा हर एक है हर बिन वरना कोई कहे नानक नेत्र अंध से सतगुर मिलियांद बदरट होई हे श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नो पठाई साचा सुनने नो पठाई श्री लाई सुनो सत बाणी जत सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस्त माणी साचा लख बढ़ाणी दां की गत कही न जाए।

संगत है। संता संग भागी पाई है, संति सेवा नाम त्याई है। नाम तुल किछ और न हो, नाम गुरमुख नाम पावे जन को। सलो बो शास्त्र बो सिमृति देखे सर्व तनोल, पूछ नाम हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जा पाव ज्ञान सब ध्यान, हर शास्त्र सिमर व्यान। योग व्यास कर्म कर्म क्रिया, सर्व त्याग ब्रह्म देख लिया। अनेक प्रकार की भोजतना, उन दान हो में भोरतना। श्री कटाय हो में खराती, वर्त नेम को भो पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरु मुख नाम जपिए एक बार। नौ खान पृथ्वी फिर चर जीव, माँ उदास तपी सर थीव। अगर मैं हो प्राण, अनक ऐसो है वर पूर्ण दान। न्यौली कर्म करे भोवासन, जैन मार्ग संयम असाधन। निमख निमख कर श्री कटाय, तो भी हो में मैल न जाए। हर के नाम संवर किछ नान, गुरुमुख नाम जपत जग पार। मन कामना तीर्थ छूट, गर्भ गुवान न मन ते हुत। सोच करे दिन आलात, मन की मैल न तन ते जात। इस दही को वो साधन करे, मन ते कबू न दिखया करे। जल तवे बहुत अनीत, शुद्ध काय काची पीत। मन हर के नाम की मैं माऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत श्याम जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर सिखाना प्रापे। एक अनेक अग्नि बुझे, कोई उपाय दर्गे नहीं सीजे। छूट ना ही वो ख्याल, मोह व्यापे माया जाल। अवर कर्पूर सभी जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जा, नाम बोले सह सुभा। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सर जावे। जे को अपनी शोभा लोरे, सास संग यो मैं छोड़े। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को अपना दृष्टि आसा, नानक पाके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सास संगा का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सोगनी सबसे ऊंचा। जहाँ का मन हो सल की रीना, हर हर नाम तिन कर कर चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सगल सिख साजना। दुख दुख जम सम दृष्टेता, नानक पाप पुण्य लेता। निर्तन को तन तेरो नाओ, निथाने को नाओ तेरो थाओ। इमानी को कर तेरो मान, सर्वदा को देरो दान। कर्म करा मन हर स्वामी, सर्वदा के अंतर जामी। अपनी अपनी जानो आते, अपन संग आप प्रवराते। तुम्हारी उत तुम ते होए, नानक अव न जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सरल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मद मर हिरा। सरल उद्यम में उद्यम पला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस तुम रतन बखाणी। सगल तान ते उत्तम था, नानक जय कट बसे हर नाम। सलो निर्गुण यार आणिया, सो प्रभु सेवा समा। जिनकी तिस्ती तराखू, नानक निहि नाल। अष्टपदी रमैया ते गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। किंतु सास सवाल सिंह आया, गर्भ अग मैं जिन्हे उबारया। बार व्यवस्था तुदे प्यारे दूध, पास जोगन भोजन सुख सूद। दुख त्याओ ऊपर सात सैन, मुख त्याओ बैठ को दैन। ए मेर गुण गुण कुछ न भूजे, बस यो तो नान सीजे। जय प्रसाद तार ऊपर सुख बस है, सुख प्रात नीत बनता संग है। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुख दाई पवन पावक अमूला। जय प्रसाद भोगे सब रसा, सब सुमेरी सम साथ बसा। दीने हर पाव करण नित रचना, किसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोग मोर अंध व्याप है, नानक कालो प्रभात है। आज अंत जो राखन हार, किसे प्रीत न करे द्वार। जहाँ की सेवा नो नित पाए, ताँसे मूढ़ा मन नी लावे। जो ठाकर ससरा हजूरे, तांगो अंधा जानत दूरे। जहाँ की तैल पाए दगे मान, किसे विसारे मुगदयान। सास दाए पूर्ण हार, नानक राखन हार व्यापार। रतन त्याग कौड़ी संग रखे, साथ छोड़ चूर संग मचे। जो चलना तो सरकार माने, जो हवन सो दूर पराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाय किस पर है। चंदन ले उदारे तो गर्भवती पसंद संग हो। अंध कूप में पतत विकराल, नानक का ले प्रभु द्वार। कर्तूत पशु की मांस जात, लोग विचारा करे दिन रात। बाहर तेज अंतर मल मया, शब्द नहीं करे करे छिपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोग स्वान। अंतर अगम बाहर तन स्वा, गल पात्र कैसे परे अथा। जहाँ के अंतर बसे प्रभाव, नानक तेजन सह समाज। सोंदा कैसे मार्ग पाया, कर गए लोग।

निभाए कहां बुझा बूझे डोरा निष्क्रिय तो समझे पोरा कहां बिसन पर जाया ढोंग जतन करे तो भी सर पंग कहो पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू आस गवन करतार करना मैं दीन दिन ठीक है नाम तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आए न चीत जो बराईता सो प्रीत बलिया के ग्रह पीतर बसे आनंद केवल माया रंग से दृढ़ परमाने मने प्रतीत काल न आवे मोड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक तो क्या हूँ जुगत विहान में कई जन्म नानक राह लो अपना कर कर्म तू ठाकर तुम तेरदास जीव पिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा में तू कनेरे कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे से ऊंचा भगवंत सगल सुमिरी तुम्हारे सूत्र तारी तुम ते हो स्वाज्ञाकारी तेरी रत्न तुम ही जाने नानक दास।

प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु मूल नमनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे किसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पाए साच रे मन मेरे तू ता सुराच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सुनाओ आप गुआए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाओ।

परम अगाध पार बंस होए जे देते समुक्ता होए सुनिता नानक बिनवंता साजना की अचरज कथा अचकली साध कै संग मुख जल होत साध संग मर सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगति सो ज्ञान साध कै संग बुद्धि परम नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध के संग एक उपर जतन साध की महिमा भरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा कमानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुले साध के संग आवे वस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हो साकी रहन साध के संग मनोहर बहन साध के संग न कछु पावे साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभु प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग मा पुनीत साध संग किस्यो ने बैर साध कै संग न बीगा पैर साध कै संग नाही कुमंदा साध संग जाहि परमानंदा साध के संग नाही होता साध के संग तरी साबा आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु आई साध के संग न कब हो तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर रहे साधु के संग अजस है साध के संग बसे थान ऊंचे साधु संग मैं पूछे साध के संग जड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मित कदम निस्तार है साधु कै संग सो तन पावे जिस संत सब को वरसावे साध संग परम राय करे सेवा साध के संग शोभा सो देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग ना एक काल दर्शन पेटत होत निहाल साध के संग कलोकत हरा साध के संग नरक पर है साध के संग इया उआ सोला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा है सोई फल पावे साध के संग न बिठा जावे पार ब्रह्म साध रिजत है नानक उतरे साध सुन रख साध के संग सो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मंत्र बिसर साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लगे प्रमीठा साधु कै संग कट कर डीठा साध संग पर आज्ञाकारी साध संग जब पई हमारी साध के संग मिटे सब रहो नानक साध के ते संजोग साध की महिमा वेद न जाना है जीता सुने ते सब ज्ञान है साध की उपमा तह घूमते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रभेद न पाई चलो मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक बिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्ट करी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल पावान ब्रह्म ज्ञानी के तीज एक ज्योम सुधा को खोदा को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एक गुनाव नानक ज्यो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रगाओ जैसे थर ऊपर आका ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सब के नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी से किस बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह दी विस्माहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सुख फला ब्रह्म ज्ञानी सुख फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
ब्रह्म ज्ञानी के कह रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सरस जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुत्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के करसरा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभात ब्रह्म ज्ञानी का बल प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का दस और भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बढ़ जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे नहीं सर।

सदा निरंकार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का साबु प्रहाथ ब्रह्म

प्रकार अष्टपदी, कई कोट कोई पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पैती प्रवासी, कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट द्वेष के श्रोते, कई कोट विसर होते, कई कोट आत्म ध्यान पारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नाम मन नाम प्यारे, नानक करते कांत न पाया, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभग आत्म निकोर, कई कोट पर द्रव को है, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया समाये, कई कोट पर विष समाये, जित जित लावो चित चित लगना, नानक करते की जाने कथा रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजी रस होगी, कई कोट पंखी सब उपाय, कई कोट पात्र बिल खंडित जाए, कई कोट पवन पानी बसंत, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सचिव सूर निखतर, कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र, सरस्त निगरी अपने सुतारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्थान सात, कई कोट देव प्राण सिमरत अर्थात, कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चल जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किनर पिसाज, कई कोट भूत प्रेत सुगल मृगाच, सब ते मेरे सब ते दूर, नानक आप अलप्रया प्रपूर, कई कोट पता के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीने मरे, कई कोट बोझो नि फिरे, कई कोट बैठ भी खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंद, जय जय पाना तय तय राखे, नानक सब किस प्राप्त के हाथे, कई कोट तय बैरागी, राम नाम संग चिंद लागी, कई कोट प्रभु को जनते, आत्म में पार बन लहनते।

नान कब सोए तेरी को पार ब्रह्म के तुम हो आत्म प्रदात तेरी को तप के देते सदा निहारे को नेत्र तेरी को नाम रखती है अमृत है सब शहीद है तेरी को नाम गुणगाए आत्म रस सुख सहज समाए अपने जन को साथ साथ समारे नान को परमेश्वर के प्यारे चलो कर्मकारों प्रवेश है दूसरे नाई को नान किस बलिहार में जल तर मई अलसो अष्टपरी कर्म कराओ कर्म जो जो तुम पार से ही हो गए फिर मैं थापे था तुम्हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्म अगर रहा हुक्म उपजे हुक्म समार हुक्म ऊंच नीच व्यवहार हुक्म अंतरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नाम सामने रहा समाई प्रा पावे मन तक पावे प्रा पावे ता पात्र प्रावे प्रा पावे दिल साथ से रखे प्रा पावे ता हर गुण पाके प्रा पावे ता पत उधार है आप करे अपन विचार है जो हाँ श्रेया का आप स्वामी खेले दिखे अंतर्जामी जो पावे सो का करावे नानक दृष्टि और न आवे कौ मानुक ते क्या हो आवे जो तुझ पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब पिछले जो तुझ पावे सोई करे अनजानत दिख्या में रचे जे जानत आपन आप बचे परमे पूरा दर्द पावे निमक में चार कुंड फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिल में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जहाँ का दृष्ट कछु न आया है जिस तत्काल दिस्पताव है जाको अपनी करे बख्शीश ता काले खाना गने जगदीश जियो तिन सत की आस कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी आप बनाई नानक जीवा देख बढ़ाई इसका बल ना ही इस हाथ कर्म करा हूँ सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो पावे सोई सुनती हो कब हूँ ऊंच नीच में बसाए कब हूँ सोग हरख रंग हटाए कब हूँ निंद चिंद व्यवहार कब हूँ उग आकाश प्यार कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिला हूँ हार कब हूँ नित करे बो पात कब हूँ सोए रहे दिन रात कब हूँ मां क्रोध विकराल कब हूँ सर्व की हो प्रवाल कब हूँ हो गए बड़ राजा कब हूँ तेघाई नीच का साजा कब हूँ अब कीर्त में आवे कब हूँ पला पला कहावे जो ब्रह्म राखे तेरी ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कब हूँ हो पंडित करे बख्यान कब हूँ मोन तारी लावे ध्यान कब हूँ तज तीर्थ स्नान कब हूँ सिख सागम ज्ञान कब हूँ कीट अस्त पतंग हो जिया अनक जौन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रपावे तुम्हें नचावे जो तुझ पावे सोई होए नानक दूजा अव न कोय कब हूँ साथ संगत के पावे उस स्थान पे बौर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का ना ही विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा से पार ब्रह्म के संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना।

नानक गर्भगले अष्टपदी जिसका अंतर्राज मान सोलह पाती हो स्वान जो जाने मैं जो बलवंत सो हो तो विष्टा का जंत आप उसको करवन कहा है जन्म मरा बहुत जो प्रमाण तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय भी विवसा है नानक मुकत आगे सुख पावे धनवंता कोई कर गरबा है प्रिंस मान किस संग न जाए बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस पल की कृपा का हुए विनाश साथ आप जाने बलवंत चुन हो जाए पसमंत किसी न बदाय आप हंकारी किस करे खुआरी गुरु प्रसाद जहाँ का मिटे सम्मान सोजन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे हों तारे सम पारे सगले गिरफारे अनंत पसया करे हंकार नरक सुरख फिर फिर अवतार अनक जतन का आत्म नहीं गया है हर दरगे को कैसे गया आप उसको जो फला कहावे किसे फलाई मिट न आवे सर्व किए जहाँ का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझे कुछ होए तब इसको सुख ना ही कोई जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जो मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब हमने चलना ही चीत जब लग मुह मगन संगमा तब लग परवाए देश जाए तब कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सैंस कटेला कोट पाए तृप्त न पाए माया पाछे पाए अनक भोग दिखिया के कराए न तृप्ता भी खप खप मरे बिना संतोष नहीं को राजा सुपन मनोरथ दुख सब काज नाम रंग सर्व सुख हो बटभागी किसे प्राप्त हो कर्म कराउन आते आप सरा सदा नानक हर जात कर्म कराउन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्टि

संतानंद को खींच कर न पाई, संतानंद को माँ प्यारा, संतानंद को परमेश्वर मारा, संतानंद को राय के हीन, संतानंद को दुखिया अर्दीन, संतानंद को सब रोग, संतानंद को शराब जोग, संतानंदा दुख में दुख, नान संत पावे ता उसका भी होए मोख, संता दुखी सरा अपवित, संता दुखी किसे का निमित, संके दुखी को दान लागा, संके दुखी को सब त्याग, संता दुखी महंकारी, संता दुखी सरा भिखारी, संत

दिया, संसारों की विविध रूप में जाए, संकेतों की को दरगे में सजाए, संसारों की सदाशय का यह संसारों की ना मरे ना जीवाय।

पियो सरा सेला कर ले पियो नैनो पे ठाकुर का रंग साथ संग दिल से सत्संग चरण चलो हर गोविंद मिटे जब ये हर दिंद कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर करके नानक पुजल मथा।

लागे दुख, जिसको हर प्रभ मंच प्यावे, सो संत सुहेला हिंदोलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक तो किसके करे, जैसा सा तैसा दिष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीधिया, गुर प्रसाद तब सबूदिया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल, नैक जमे नैक सुमर, अपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी ताई सब श्रेष्ठ, आते आप सर्व में आप, अनंत जोत रचा प्यो थाप, अपनासी नाय।

आप कहते हो तो दुख विकार में आते मेरे नई के पास गुर का शब्द जा पहने आल उनकी सेवा सोई लागे जिसमें कृपा करे वड़ पा गए।

संग लपट रो रस रोगी संग राम नाम जप ते माए नाम तो पसे पी पा जाए जिस को लंस आया राम नाम संपन्न कर पा

प्रसन्न अष्टपदी अवनाशी ब्रह्मा मेरा को मानो की तू प्रीत दयाल किसते परे नाई किसको सर्वनम परे को सोए आपे बिना आपे दाना जय गुणी ही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान जाल भक्तिंद साते की चरणी पाओ नानक तै मन एहराओ मन का पूर्ण सदा जोग जो कर पाया सोई भोग अन्न

दो मैं दूंगी और मैं तो पीता दस मैं दूंगी चार चार पढ़ते हैं सुखाया नानक सुरता के अंत न पाया जाकी लीला के मितनाए सर्वदेव हारे अवधारे पिता।

चौथे तब मैं सोजन कर पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुष समय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए जिसे सब पली सत नाम सुधाई विश्वास सत नान गुट दे पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेज अंजा गेरे प्रवेश सत नित पूजा जे कोए नाम जपत साकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मिटगत जिसकी सृष्टि सो करने हार अब न बूझ कर विचार करते की वित न जाने किया नानक जो कृपावे सो वर्तिया विस्म विषम ते विस्माद जिन पूजा किस पाया स्वाद प्रभु के रंग राजन रह गुर के बचन।

जुगाद सच है वे सच नानको सी वे सच सच पड़ी जग सतल प्रसंहार पूजा पासत से उदार दर्शन का सत्य कहार नाम का सत्यवहार आप सत सतारी आपे गुणकारी सब सत सत प्रवक्ता सुत सत सत प्रसुता दूजा हार को सत सब होए नानक सत सत प्रसोए सत रूप हृदय जन्मानिया कर्म कराओ तिर मूर्त पछाणिया जाके हृदय विश्वास प्रवाया सत ज्ञान किस मन प्रगटाया ऐसी निपो हो बसाना इस देव किया किस मैं

छात्र का सेवक आज्ञाकारी, छात्र का सेवक सलाह पुजारी, छात्र के सेवक का मन प्रतीत, छात्र के सेवक की निर्मल जीत, छात्र को सेवक जाने संग, छात्र सेवक नाम का रंग, सेवक को कृपाल हारा, सेवक की राखे नंकारा, सो सेवक जिस दया प्रकार है, नान सो सेवक साथ साथ हमारा है, अपने जन का पर्दा टाका है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाए, अपने सेवक को नाम जपाए, अपने सेवक की आपद रख है, ताकि कदम कोई न लख है, ताकि सेवकों को ना पहुँचा है, ताकि सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नान सो सेवक दैर प्रताया, निकी की री में कर रख है, पसम कराए लश्कर को रख है, इसका साथ न कर आप, ताको रात देकर हाथ मांग

शिवर नाम आधारो और उपास समित विचारो चल कमल हृदय उधारो कर्मकार गौ नाम हरवत एक संचो हो भगवंत संजना का निर्मंत एक आस रखो मनमान सर्व नान मिटाए जिस तन को चार कुल उठाए स्वतन हर सेवा दे पाए जिसको पूर्ण भाग्य मीत सो दुख साधु संपरीत जिस शोभा को करे फल करनी सा शोभा बज हर की सरनी अन कुपारी रोग न जा रोग मिटाए हर औषध लाए हर विधान में हर नाम निदान जब नानक उधर के प्रवान मन प्रभु तो हर के नाय दर साध आए ताको विघ्न न लागे कोई जा कह रहे बसे हर सोए करता हटा नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ और दिल से पूर्ण हो आस अब पाए आत्म प्रगास जिसका जाए बसे अविनाशी कौ नानक काटी दम फाती तक विचार कह जब साचा जन्म है चौका चौका चा आ गौन मिटे प्रसे आप त्या शर्म गुरुदेव इन रतन जन्म का हो उधार हर हर समय प्राण आधार अन कुपाल न चूतन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की पल करो मन लाल मन भर सकना कल पाए संग न चालस तेरा तना तू चाल पटावे मूर्ख मना सुख मीत तम आर बनता इनते कहो तुम कम सुना था राजरंग माया विस्तार इनते कहो कम छुटकार हस हसी रख सवारी झूठा डम झूठ वारी जिल दिए दिल बुरे नाम दिखाना नाम विकार नाम पछताना गुर की मत तू ले आने भक्त नामो डूबे जाने हर की पद करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण को राखो मन मान जन्म जन्म के किल जाए आज को अवरा नाम के पाओ सुन कह कर पाओ सार भूत सता को नाम सह सुबारे नाम गुंजाओ गुण धावत एक उतरत महल बिर जाए और मैं भी फैल कोई अचिंत बस सुगुनाल सात गिरा हर नाम समाल चार से आनंद संगीमा सात संग पाले सचना हर पूंजी सच करो व्यवहार किया सुख करके जयकार सर्व नम तरे को दे कौ नानक जाके मस्त करे एक को जाप एक को सलाहा एक सिमर एक को मन आहा एक उसके गुणगा अनंत मन संजाप एक

और बिना कह मंत्र रंग बिरला को उपाय संग एक भक्त जी देकर मया वो प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कहीं न जाए ना गया सब समाये।

संग करो आनंद, गुण गाओ का परमानंद, राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत पचार के गुण गाओ, राम संग का एहसाओ, आज पैर सबसे को मेरा, मिटे अज्ञान विस्तृत अंधेरा, सो उपदेश कृति को पाओ, मन इच्छे नाम फल पाओ, हर तर पर बोले सवार, राम नाम अंतर उदार, पूरे खुशी पूरी भी क्या, किस मन बसे, किस हाथ भी क्या, मन पर नाम को लाज, दूर तक मत हो जाओ, सच पार करो पारी, तुम्हारी एकाएक रखो मनमार, नांग बोर न आए जाए, जितने दूर का हो जाए, उबराए मेरे पुत पैर सर्व पौन है, सब कृपा से प्राणी सुख है, इस प्राण से इतना ही दुख, नाम जपत मन हो सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, इस संग को कोई न पुत्र हार, सिर ऊपर साडा गुरु दुआ, नानक संकाय कार्य पूरा, मत पूरी अमृत जान की दृष्ट, दर्शन देखत

मन प्रदास अश्वली सर्वसात्मकर्ता नाम प्रभु कालाका सर्वसमय अनग्रहण नवन अमृत प्रणाम जय नाम नजारी अचरत समाज इन दिशा इस आप दिखाए नाम कृष्ण को दीपाए सोंत को पार अनंत घट घट व्या व्या भगवंत सरमाय आकाश प्यार सरोव पूर्ण कृपाल पंचम पंत है पार ब्रह्म जैसी जन जाता साक्रम कौन तो नहीं बस प्रमाण चार कौन तो जल समान किस पे तेना नहीं को खाओ गुरु प्रसाद न सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख सत्य सूर निखत में देख जान का की सब को बोला है आप अदो न कम भूल है सब कला करते देखे मोन पढ़िए तुम अमोल समझो तुम्हें जा की जोत स्वामी उद्भूत गुरु प्रसाद नाम कृतन में एक विश्वास संजना का एक सप्तम संजना का एक सप्तम संजना सुने सुवचन सब जाति हम संगठन दिन जाता हो इसलिए है तो सत्वचन साधु

में सब हुई आप सत्या और सत्य इस सत्य सभी उत्पत्त इस बारे सत्य विस्तार इस बारे का एक ओंकार अंतर मिला निकट पहुंचे दूर आपे आका प्रपूर अंतर्गत इस नाम कृष्ण आप सब पूछा बता सब नैन आपे सहारा सब सुनेगी ना करता अब जब आप

नानक उन संग मोहे उधार सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ नाम बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न।

प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन दिन सह दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभु कै सिमरन हुए सो पहला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला, से सिमरह जिन आ

दास दसना प्रभ कौ सिमरह से धनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से वे मोहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा अविनाशी।

नानक सिमरन पूरे पहाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबहू ना जूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरह से जान जिन कौ प्रभ मया नानक तिन जान शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन कर

नाथ अष्टपदीम जय मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय जय महापयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमाहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिह मार्ग इहो जात इकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याई नानक गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कोट लख बाहे नाम जपत है पार पराहे अनक बिघन जह आए संहार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कब हुन धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाई ऐसा

पुरुष नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म ध्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुण्य दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पांति।

कामना तीर्थ दे छुटै, गर्व गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू न बिखिया करे। जल तोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहुमूच। बहुत स्यानप जमका बहु व्यापै, अनेक जतन कर कृष्ण ना त्रापै। पेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगहा नहीं सिझै। छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्यापह माया जाल। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन।

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन्तु साज स्वार सिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझ प्यार है दूध पर जोगन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अपयाओ बैठ कौ दैन इहो निर्गुण गुण कछु ना बूझै बख्श ले हो तौ नानक सीजै जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसहै सुत प्रात मीत बनता संग सहै

कर गह लेहो ओढ़ निभावै, कहां बुझारत बूझै डोरा, निष्कहियै तौ समझै भोरा, कहां बिशन पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग, कह पिंगल पर

तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मह सुख सनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।

पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिन सह ओ मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहे तह अंध अंधार।

बृहस्पति जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिष्ठा कर कौरख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिस्कौ सिमृत परमगत पाव है जिह प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना यह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग यह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावे तिसह

मानै मुख तां को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ते आए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत।

तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिम

जय प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस तब कौ कबहु नाम बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत

मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सास सास जितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप। जिह प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ

प्रसाद जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहज बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समान है ऐसा प्रत्याग

जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन पेट तो होत निहाल साध कै संग कलूख तहरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहा उहा सुहेला साध संग बिसरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग ना बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओह वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भ्रम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, इस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिशन प्रीत। हर के चरण हृदय।

जुगत नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जित जित कर राख तैसा तिन नाव आपे करन करावन जोग प्रभ पहवै सोई फुन होग पसरियो आप होए अंत तरंग।

नानक आप अलिप्त रहया परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जी वह मर है, कई कोट बहुजोनी फिर है, कई कोट बैठ ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह पाना तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह।

राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आप कहो कर्म मंत कहावै जन्म मरै बहुजोन प्रमावै।

खिन में हुए जाए पसमंत। किसै ना बदाय आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगाह परवान। कोट कर्म करे हौं तहारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै।

कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए। जब यह जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरे मीत तब लग निश्चिल नाही चीत। जब लग मोह मग्न संगमाए तब लग तमराए।

खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसै प्राप्त होए, करन करावने आपे आप, सदा सदा नानक।

अन जिसका दिया रह अगहाय बहुर न तृष्णा लाग आए मारे राखे को आप मानुख कै किसना ही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए जिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन ना लागै कोए।

जिस प्रभु अपना कृपा करे। सो सेवक कहो किससे डरे, जैसा साता सा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत।

अंग लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे नानक पत से टी कर जाहे। जिस बखर कौ लैन तू आया, जिस बखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया।

हर कीर्तन गाई अनक बिगनते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै ओट गही संत है डर आया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक कौ जीवालन हार भूखे कौ देवते आधार।

जानौ आठ पहर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट ले है, मन तन अपना तिन जन दे है। जिन जन अपना जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पाव है।

गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया का संग ना लेप मन महराख हर हर।

हैं। जिस तन को चार कुंठ उठताव हैं, सो तन हर सेवा ते पाव हैं। जिस सुख को नितवां छह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह पली करनी, सा शोभा भज हर की शरणी। अन क्यों पावी रोग न जाए, रोग मिटाय हर अवख दिलाए। सर्व निधान मह हर नाम निधान, जब नानक दरगाह परवान। मन पर बुद्ध हो हर कह नाए, दैत स्थाव ते आवै ठाए। ता को बिघ्न न लागै कोय, जा कै हृदय बसै हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिनसै पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। सत विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। यो रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अन के उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की पवित्र करो मन ला।

साजन संत करो इहो काम, आम त्याग जपहो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपहो अवरह नाम जपावहो, भगत पाए तरिए संसार, बिन भगति तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नाश।

अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोभ कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत ले।

ऊपर जा। जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल सिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसह भूख।

तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहाँ विचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। विस्मन विस्म रहे।

बंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मो परम पै पहार दुख सुख मान अपमान दुख सुख मान अपमान।

सब ऊपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपाले जीअन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसहि ध्यात, जिस भाव

उत्कृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताका निकट ना आवत काल अमर भय।

अष्टपदी संत सांग अंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक कट माहे अनकरंग नन्हा दृष्टा है नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देहि महेश का विश्राम सुन समाध अनहत है नाद कहन ना जाई अचर्ज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक किस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत तरन

चार कुंटल दहज से समाहे, तिस दे तहन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत मह देख, ससियर सूर निखेत्र मह एक, वाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कब हूँ डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुण है अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, धारण है स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नाश, नानक तिन मह हो विसास। संत जना का देखन सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म। संत जना सुन है शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी एह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पातन।

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए सर्वपूर।

जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत।

रतन सुनत कमावत होत उदार आप करै लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद बाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल।

परम सम्मान योग चवर छतर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी चरण शरण विच इकत्र होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों अज शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित निम्रता दे पुंज गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रचनहारे हरमंदर साहिब जी दे उसरिये और तपदे हुए अंदर नू ठंड पाण वाले धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह उन्हां दा शहादत वाला दिन और उन्हां दे पावन पवित्र जीवन नू आपां वाचन दा यतन करांगे। आप जितने भी गुरु चरण शरण विच इकत्र होए हो अंदर नू टिका के धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दी टेक लईए और बेनती करिए कृपालू सतगुरु जी आप विच वरतो सानू कहण वालियां नू भी अंदर दा टिका बख्शो सुन वालियां दे अंदर नू भावना शरदा नाल सरोत बख्शो और आप विच वरत के प्रेम भावना नाल अपने पवित्र जीवन दी शहादत दी और बाणी दी विचार आप ही करा लवो। साध संगत बख्शो असीस गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दे पावन पवित्र जीवन नू जदों आपां पढ़ने हैं ते धन गुरु नानक साहिब कृपालू जी ने जो अपनी मुबारक रचना तो जपजी साहिब जी दी पहली पौड़ी दी संपूर्णता ते सच्यार बन वास्ते केड़े दो गुणा नू धारण करना पैंदा है उस दा जिक्र कीता ते धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने ए दो शब्द पूरा जीवन अपने सामने रख के इन्हां नू कमा के सानू दस दिता के उस गुरु नानक साहिब जी दे पहले सबक उत्ते पहरा दईए ते तत्ती तवी ते बैठ के भी अंदर दा खेड़ा कदी खत्म नहीं हुंदा। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।